नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।
1: डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। कृषि संबंधी कुछ बातें, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत जैव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व। आइए पूर्व प्रसारित यह जानकारी सुने। संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का।
4: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम, फास्फेट और पोटाश, घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी यानी रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, न ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से

0: होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फास्फेट घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को 3 प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15-20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाए जाने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचा कर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस काल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

मनुष्य की वाणी काफी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य की मधुर वाणी उनके जीवन में काफी बदलाव लाती है। मधुर वाणी बोलने वाला इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना केवल अपनी मधुर वाणी के जरिए ही कर पाता है। वह जीवन में खुश रह पाता है। वास्तव में जीवन में मधुर वाणी का काफी महत्व है। यदि हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम उससे मधुर वाणी के साथ बात करते हैं, तो काफी संभावना होती है कि सामने वाले व्यक्ति से हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। मधुर वाणी के जरिए हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रिश्ते काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब भी किसी विकट परिस्थिति में फंसते हैं तो हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। यदि हम अपने अच्छे रिश्ते बनाएं तो हम हमारे जीवन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम मधुर वाणी के महत्व को समझेंगे। मधुर वाणी के जरिए हम अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। छोटी सी मधुर वाणी आपके व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। व्यापार में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोग आपकी मधुर वाणी देखकर आपसे सेवाएं लेने में

बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। मधुर वाणी का जो व्यक्ति महत्व समझता है, उसका उचित उपयोग करता है, उसके कई सारे दोस्त होते हैं जो उस व्यक्ति की हर संभव मदद करते हैं। वास्तव में मधुर वाणी से हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ, बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमसे मधुर वाणी में बात करे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की मधुर वाणी से इतने प्रभावित होते हैं कि वह सामने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। मधुर वाणी का जीवन में काफी महत्व है। हर किसी को मधुर वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी से हम कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जो शायद कटु वाणी से संभव नहीं है। यहाँ तक कि हम ऐसे किसी कठिन कार्य को भी मधुर वाणी के जरिए संभव बना सकते हैं जो किसी भी तरह से संभव ना हो। मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति हर जगह इज्जत पाता है। मधुर वाणी जब हम बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमसे आकर्षित होता है, और जब भी हम उससे कुछ बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर बात हमारी बन जाती है, क्योंकि हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे मन को तो शीतल करे ही, सामने वाले को भी शीतल करे, उसे भी अच्छा महसूस हो और वह हमारे साथ अपने अच्छे और मधुर संबंध बनाए। वाणी मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। मनुष्य का भाषा पर विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। हमारी वाणी में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। मधुर वाणी मनोनुकूल होती है, जो कानों में पड़ने पर चित्त को द्रवित कर देती है। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। एक ही बात को हम कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं अपनी मधुर वाणी से। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता का रास्ता खोल देती है। कटु वाणी आदमी को रुष्ट कर सकती है, तो इसके विपरीत मधुर वाणी दूसरे को प्रसन्न भी कर सकती है। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। इसलिए हमारी वाणी किसी भी स्थिति में कटु एवं अशिष्ट नहीं होनी चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं कुछ भजन।

0: राधा रमन लाल जी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए अब आपको जानकारी दिलवाएं अनिद्रा कारण और उपचार। डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष से बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल, आकाशवाणी रांची केंद्र के सौजन से प्राप्त यह भेंट वार्ता है।
1: आजकल की भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
2: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना। इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनिदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए, थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
1: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़ें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती है, लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर, लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं, अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
1: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज़ है?
2: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है, खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पर जाइए, आप मांगिए, आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, शॉर्ट थोड़े दिन के लिए अनिंद्रा, जो दिनों से दो तीन हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिंद्रा जो क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, जो महीनों सालों भर रहता है। तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो साइकिल चेंजेस, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होते, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो दीर्घकालीन इंसोम्निया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है। इसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, जीआई रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइड के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनिज, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम में ओवर द काउंटर दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकें। सर्वप्रथम हम नींद लेने जाते हैं तो हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको सही नींद आएगी। और एक और नया कंसेप्ट अभी डेवलप किया है कि पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब सोने वाले जगह को हम स्लीप के अनुसार लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रक करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे, नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए?
2: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है। दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता है। तो अपने लाइफ का उद्देश्य और कार्य को निश्चित करें और बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़े नहीं, और योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब कहने का है शारीरिक परिश्रम करें, जिससे कि आपको थकान होगी और खुद नींद आएगी। और सोने का जगह, जैसे मैं बताया, शांत और आरामदायक वातावरण रखें जिससे नींद आए। और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी करती है उससे दूर भागें, उससे बचें, उसमें इन्वॉल्व नहीं हों। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श रह के उसके अनुरूप हर को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, जो आप दवा का सेवन कुछ दिनों तक कम मात्रा, कम डोजेज में आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रात्रि के भोजन के

0: कितने समय उपरांत व्यक्ति को शयन कक्ष में चला जाना चाहिए?
1: रात्रि के भोजन के 1 से 2 घंटे के भीतर आपको शयन कक्ष में चले जाए। तुरंत इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फूड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। उसके 1.5 घंटे बाद आपने सोने के बेड पे चले जाए, जो बेड आरामदायक रहे। ऐसा नहीं रहे कि बेड गंदा रहे, सामने टीवी चलता रहे, लाइट जलता रहे, कम वातावरण में, जिसको जैसा सुचार, किसी को कम लाइट रहती, किसी को बिल्कुल लाइट नहीं पसंद नहीं रहती है, उस वातावरण बना के जिसको स्लीप हाइजीन कहते हैं मेंटेन करके आप धीरे धीरे सो सकते हैं। एक अंग्रेजी में लाइन है, इफ़ यू कैनॉट स्लीप यू कैनॉट हील। अगर आप सोएंगे नहीं तो स्वस्थ और हील नहीं होंगे। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ध्यान दें, डाइट को ध्यान दें, गलत आदतों से बचें और सही नींद लें और आप सही लंबी आयु को प्राप्त करेंगे अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।
0: हम तनाव से दूर रहें और सही वक्त पर हम यदि सो जाते हैं और पर्याप्त समय यदि हम अपनी नींद को देते हैं तो हमारे कार्य क्षमता में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अधिक समय तक काम कर पाएंगे और जो भी हम कार्य करेंगे वो।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। 51 सदस्याः भूटान भारत संबंधानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशी देशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां करिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। यात्रावधौ प्रतिनिधयः भूटान देशस्य राज्ञा तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा च सह मेलनं करिष्यन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य जनान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानं व्यावहारिकरूपेण प्रवर्तयितुं प्रार्थयत्। अनेन नागरिकेभ्यः इन्धनस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुं अनावश्यकं स्वर्णक्रयणं परिहर्तुं च आग्रह कृतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्देशं प्रदत्तवान् यत् मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणाम् अन्ये च जनानां संख्या तत्क्षणमेव 50% यावत् न्यूनीकर्तव्यमिति। असौ प्रार्थयत् यत् राज्ये गृहात् कार्यं कुर्वन्तु इति। महिलानां सुरक्षायै संस्थागत समन्वयं सुदृढीकर्तुं राष्ट्रिय महिला योगेन दिल्ली आरक्षकैः सह एकं उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय महिलायोगस्य अध्यक्षा विजया राहतकर इत्येषा समन्वितस्य पीडित केन्द्रितस्य च दृष्टेः आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवती। एषा अवदत् यत् महिलाभ्यः समयोचित समर्थनं न्यायञ्च सुनिश्चेतुं गृहहिंसा अधिनियमस्य अन्तर्गतम् आरक्षकयन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणाञ्च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीन देशस्य त्रिदिवसीया यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीन देशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिक सम्बन्धानां अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 2 अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नई सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The delegates will also meet the King of Bhutan and the Prime Minister of Bhutan during the visit. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those which were

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं अपने केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे पलाश कार्यक्रम के तहत कुछ लोकगीत। कलाकार होंगे भरत सिंह भारती और साथी। गुलाम अली से सुनेंगे आप चंद घोंसले स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत 7:45 पर। 8 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। 8:30 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। हॉल में गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन हम प्रस्तुत करेंगे अपने स्टूडियो से 8:45 पर। 9 बजे जोहार पलामू कार्यक्रम सुन पाएंगे आप। प्रस्तुति स्वर होगा नर्मला तिवारी का और संयोजनकर्ता होंगे श्री एस के लाल। उमंग प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप सुबह 9:30 बजे। 10 बजे हिंदी समाचार अंग्रेजी समाचार 10:05 पर। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

10:10 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में। विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आप। सेल्यूलाइड के सितारे 10:10 पर, 11 बजे रंग तरंग और 12 बजे यादों की महफिल। 1 बजे पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 1:10 पर। 1:20 से आप सुनेंगे सुरीला सफर विविध भारती के तहत। अंग्रेजी समाचार 2 बजे, हिंदी समाचार 2:15 पर और 2:30 बजे सुनेंगे आप सदाबहार नगमे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे से सुनेंगे आप सखी सहेली कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रादेशिक समाचारों का समय शाम 4 बजे। 4:02 से पुनः सुनेंगे आप विविध भारती के तहत आज के मेहमान। प्रादेशिक समाचार 5 बजे। 5:02 से वेद भारती के तहत आप सुनेंगे छाया गीत। शाम 5:30 पर एक बार फिर से हम आपको जानकारी देंगे कार्यक्रमों की, कार्यक्रम विवरण के तहत।

35 मिनट पर घर आंगन कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वार्ता कृति सिंह की, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। इसी कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी दैनिक दिनचर्या को दुरुस्त रखें और मोबाइल से दूरी आवश्यक। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी का समय शाम 6:02 से चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में खेतों को परती न छोड़ें किसान, खेतों की गहरी जुताई से लाभ, प्राकृतिक खेती पर वार्ता भेंट वार्ता सुनेंगे आप। डॉक्टर रमेश कुमार कृषि विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे संतोष कुमार। पूर्व प्रसारित यह भेंट वार्ता होगी। किसान वाणी कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम शाम 6:30 चर्चा की जाएगी। पशुपालन में महिलाओं की भूमिका पर आज की बात होगी। अदौरी बरी बनाने का उचित समय, मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण सुनेंगे आप। डॉक्टर विनोद कुमार पांडे से ले गई भेंट वार्ता। कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी पलामू बातचीत करेंगे संतोष कुमार। पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता होगी। मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी दी जाएगी और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी आप जान पाएंगे। आज की नसीहत प्राकृतिक खेती पर शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। प्रादेशिक समाचार 7:00 सुन सकते हैं आप और जिले में आजकल 7:10 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग कल्याणी। स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुनेंगे आप गर्भावस्था के मुख का कैंसर। डॉक्टर अमूल्या स्वाति से बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल 7:45 पर। 8:00 सुनेंगे आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। रात्रि 8:45 पर हिंदी अंग्रेजी उर्दू समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। रात्रि 9:30 विविध भारती के तहत सुनेंगे आज के फनकार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम प्रस्तुत करेंगे अपने स्टूडियो से रात्रि के 10:00। 11:00 हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और सभा समापन किया जाएगा रात्रि के 11:10 पर। तो यह थी जानकारी। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय हो चला है। पलाश कार्यक्रम का सुनवाते हैं आपको भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं भरत सिंह भारती और साथी।

भरत सिंह भारती और साथियों से अभी आप सुन रहे थे कुछ भोजपुरी लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे गीत हौसलों के प्रोग्राम स्वर सरिता के तहत चंद हौसलें गुलाम अली की गई।

0: और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप

0: में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी।

0: सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र

0: लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan

0: hike as oil marketing companies' mounting losses cause concern. PM cuts convoy, government departments to adopt austerity measures, reports the Times of India. Under the headline, In a Shifting World Order, Five Principles Should Guide India's Diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, In foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times, noting the war impact on growth and current accounts, cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी छह एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से 2018 में लापता बच्ची के मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने मामले की धीमी जांच पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वर्ष 2018 से अब तक जिला में तैनात रहे सभी छह एसपी और छह जांच अधिकारियों को 9 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस बच्ची को ढूंढने में विफल रहती है तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। रांची के आईआईसीएम में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो गई। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड को कोल इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ है। स्थानीय महिलाओं, डॉक्टरों और महिला उद्यमियों ने देश हित में अपनी विदेश यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं लोगों ने सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है।
3: मोदी सरकार ने अपील किया है कि हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। और अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं वहां से काफ़ी डिस्टेंस है हमारा, 2 किलोमीटर। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूं, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है। एंड मैं आम लोगों से भी अपील करूंगी कि वो भी पेट्रोल एंड डीजल का कम से कम उपयोग करें।
2: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भेजकर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में 9 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से एक वर्ष तक विदेशी यात्राएं, चुनावी रैलियां और रोड शो स्थगित करने तथा कॉरपोरेट कर्ज माफी पर रोक लगाने की अपील की गई है।
4: हम भी कहना चाहते हैं, आप अपनी विवेक

0: राष्ट्र हित में कहा। आज इस प्रकार से संकट पर वैसी घड़ी में उन्होंने कहा है कि बेवजह आप गाड़ी लेके इधर उधर मत घूमिए, सोना मत खरीदिए। 2013 में कैसे उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा था कि सोना मत खरीदिए।
1: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज दोपहर बाद धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने हजारीबाग एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और गुमशुदगी के लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई करने और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए सूबे की बदतर कानून व्यवस्था के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
2: लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर और इस स्थिति तक लाने के लिए राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। तो जहां इस प्रकार की करप्ट ऑफिसर को सीनियर पोस्ट पर सरकार बैठा के रखे तो अच्छे अफसरों को तो मनोबल गिरेगा, अगर जिला में पदस्थापित करेंगे तो लूट तो मचेगी।
1: सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने गढ़वा स्थित पूर्व नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जहां सीआरपीएफ है वहां विजय निश्चित है।
3: तो जहाँ जहाँ हमारी फोर्स तैनात है वहाँ जाके फोर्स को देखते हैं किस तरह से कार्य कर रही है और क्या उनको दिक्कतें कुछ तो नहीं है। हमारे जवान पूरे तरह से हौसले में है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप देखिए जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है।
1: राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में छात्राओं के साथ लोकप्रिय नागपुरी फिल्म सेरिंग देखी। फिल्म देखने के बाद मंत्री ने स्थानीय कला संस्कृति को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
4: पॉलिसी में भी सरकार काम कर रही है ऐसे कलाकारों को और आगे बढ़ावा देने के लिए, और हमारे झारखंड में कलाकारों में छुपी हुई बहुत हुनर है और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो नए स्टाइल में नए आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूवी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक बहुत वृहद मार्केट है ऐसे मूवीज के लिए भी।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल राज्य में आए भीषण चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। रांची में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी से कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए, जिससे आधा दर्जन टोटो क्षतिग्रस्त हो गए। हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि खूंटी में ओलावृष्टि और रामगढ़ व हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत हो गई। झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा का चयन भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में हुआ है। वे 16 और 17 मई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर पुरुष रग्बी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह बनाकर उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने

परीक्षा रद्द होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। प्रभात खबर की सुर्खी है, अदिति का पता नहीं, नाले की झाड़ियों में मिला मांस, होगी फॉरेंसिक जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, PVUNL की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू। दैनिक जागरण के अनुसार, जिस लापता बच्ची का शव समझ पोस्टमार्टम को भेजा, निकली पशु की हड्डी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रांची केंद्र को और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त छवि।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 MHz पर श्रोताओं, समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार।

सावन कुमार के लिखे गाने को संगीतबद्ध किया था उषा मंगेशकर ने, आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म थी सौतन। और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना, दिल पर ये दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ मैं इस

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म रफो चक्कर में। गीत के बोल गुलशन बावरा के थे, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतज़ार

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला में। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है अब जोहार पलामू कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का। संयोजन करता है श्री एस के लाल।
1: जोहार पलामू।

जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तुम्हारे भीतर आनंद और प्रसन्नता का एक झरना है। तुम्हारे मूल में प्रकाश, प्रेम और सत्य है, वहाँ कोई डर नहीं है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम तुम्हारा अस्तित्व है। सच्चा प्यार स्वार्थ से रहित होता है और उसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। ये सुविचार श्री श्री श्री रविशंकर जी के हैं। आज उनके जन्मदिवस पर कोटिशा वंदन करते हुए अब सुनवाते हैं आपको एक गीत।

अब बातें हैं मौसम की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून जल्दी आने की संभावना है, और यदि हम अपने राज्य की बातें करें तो कई ज़िलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अगर अपने शहर की हम बातें करें तो हमारे यहाँ मौसम साफ रहने की उम्मीद है, आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान की बातें करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम नमी 66%, न्यूनतम 18%, और बादल आ जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर आसमान साफ रहने का ही अनुमान लगाया गया है कि अधिकतर समय तक आसमान साफ रहेगा। कल की हम बातें करें तो कल तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता कल 55% अधिकतम, न्यूनतम 13%, और हवा की गति 6.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आसमान साफ रहने की ही उम्मीद जताई गई है, लेकिन राज्य भर के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, तो ऐसा कुछ रह सकता है मौसम। चलिए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं एक मधुर।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं जो हर पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। और आइए अब बातें कर लेते हैं हम स्वास्थ्य संबंधी। इस बदलते मौसम में आँखों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई लोगों को खुजली हो जाती है, कई लोगों की आँखों से पानी आने लगता है और इसका मुख्य कारण होता है एलर्जी, तेज़ धूप, धूल, शुष्क हवा, जो एलर्जी के कणों को बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए आँखों को

रगड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ठंडे पानी से बार बार आँखों को साफ कीजिए। जब भी बाहर निकलिए धूप का चश्मा लगाइए और पानी खूब पीजिए। ठंडी सिकाई कीजिए। अधिक परेशानी होने पर आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। एलर्जी का मुख्य कारण होता है पराकण, धूल और गर्मी। तेज धूप, गर्म हवा और एयर कंडीशनर के कारण आंखों में सूखापन आ जाता है और इसके कारण भी खुजली की समस्या, आंखों में पानी आने की समस्या शुरू हो जाती है। संक्रमण हो सकता है क्योंकि इस मौसम में लोग पुल में स्नान करते हैं जिसमें क्लोरीन या बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं कि आँखों को हमेशा साफ करें, ठंडे पानी से उसे बार बार छींटे मारकर साफ करें। आँखों पर गीले कपड़े की पट्टी यानी आँखों को बंद करके गीले कपड़े से सिकाई करें। आँखों को कभी भी खुजली होने पर रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है, सूजन बढ़ जाती है। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी लोग कम पीते हैं जिससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसमें एक आँखों की समस्या भी है। बाहर जब भी धूप में जाएं तो अपने सर को मोटे तौलिए से ढकें, आँखों का चश्मा लगाएं। घर से बाहर जाने के बाद और बाहर से घर आने के बाद चेहरे को, आँखों को अवश्य ही साफ करें, हाथों को साफ करें। जब पराग कण अधिक हो इस मौसम में तो ऐसे में आँखों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आँखों में बहुत ज़्यादा लालिमा है, सूजन है, दर्द है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो फिर आँखों के डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपनी आँखों का आप इलाज करवाइए। ये तो हुई बातें स्वास्थ्य से संबंधी, और चलिए एक बार पुनः ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं गाना।

मित्रों, प्रतीक्षा अनवरत। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अतीत के पन्नों में समा गए, उनकी बातें, उनकी यादें और कुछ ऐसी घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर हमें बार बार उस समय की गाथा सुनाती हैं। चलिए पलटते हैं अब इतिहास के पन्ने और जानते हैं आज की तारीख में दर्ज देश विदेश की खबरें। इतिहास केवल अतीत की गाथा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि वह आईना होता है जो हमें वर्तमान समझने और भविष्य गढ़ने की दिशा देखता है। जी हाँ, चलिए जानते हैं आज की तारीख में क्या क्या हुआ था भारत और विश्व में। भारत की पहली संसद की पहली बैठक हुई थी आज ही की तारीख को, सन 1952 में। जी हाँ, आज की तारीख सन 1952 को स्वतंत्र भारत की पहली संसद की बैठक आयोजित हुई थी। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की नींव के रूप में ऐतिहासिक है। पहली लोकसभा की कुल सीटें थी 489।

17.3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। निर्वाचित सांसदों में 401 पुरुष और 22 महिलाएं थीं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री इस सत्र की शुरुआत में ऐतिहासिक भाषण दिया था उन्होंने और कहा था कि हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं जी, और यह संसद भारत की जनता की आवाज़ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे आज ही की तारीख को, और ब्राज़ील में गुलामी प्रथा का अंत हुआ था आज ही की तारीख को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे। 5 सितंबर को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ था। वो प्रतिष्ठित विद्वान थे, दार्शनिक थे, राजनेता थे और उनके प्रभाव ने भारत के शैक्षिक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी छाप छोड़ी थी। चलिए बातें कर लेते हैं। गुलामी प्रथा का अंत हुआ था ब्राज़ील में आज ही की तारीख को। 13 मई 1888 को ब्राज़ील ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजकुमारी इसाबेल ने गोल्डन लॉ पर हस्ताक्षर किए जिसने बिना किसी मुआवजे के सभी दासों को मुक्त करने का आदेश दिया। यह फैसला गोल्डन लॉ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राज़ील पश्चिम गोलार्ध में गुलामी प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला अंतिम राष्ट्र। सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को मिला था निवानो शांति पुरस्कार सन 2010 में। इला भट्ट को निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इला भट्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के संस्थापक थीं, उन्हें 2010 में निवानो शांति पुरस्कार और पहले वैश्विक निष्पक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बाद में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। आज ही की तारीख को इक्वाडोर गणराज्य की स्थापना हुई थी। जुआन जोन्स फ्लोरेंस बने थे पहले राष्ट्रपति सन 1830 में। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में आज की तारीख में देश और विदेश की दर्ज हैं। चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की

मित्रों, समय की रफ्तार के संग संग चलना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम थमे बस मंजिल पीछे छूट जाती है, समय आगे निकल जाता है। घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई भी इस कार्यक्रम के समय को समाप्ति की ओर इशारा कर रही है। अपनी दोस्त निर्मला को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार, जोहार।

आप सुन रहे थे जो हर पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजनकर्ता थे श्री एस के लाल। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान।

0: आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं? ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब मेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी
4: चलो होगा। चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
6: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
6: नहीं समझे?
5: नहीं।
6: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: आप गर्मी अम्मा हैं।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
2: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: अम्मा दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
3: गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: शाम मैं एक चरवाया हूँ।

0: साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
1: क्या सूचना?
0: साहब, दुश्मनों के बारे में।
1: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
0: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
2: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
0: सर, हम एक चरवाया हैं।
2: आगे बताओ।
0: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
2: क्या देखा तुमने?
0: शब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
2: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
2: कितने लोग रहे होंगे?
0: शब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
2: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
3: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
4: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
3: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
4: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
3: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
4: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
3: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
4: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
5: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों

0: की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
0: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
2: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
0: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
0: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
1: उधर से। हाँ
0: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
0: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
0: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
0: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
4: यस सर।
0: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
0: कोई शक?
2: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
4: यस सर।
1: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
0: धीमे बोलो, धीमे।
1: जी।
0: उन्हें पता ना चल जाए।
1: जी सर।
0: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
1: जी।
0: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
1: ठीक है सर।
0: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
1: जी सर।
0: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
0: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे।
1: ओके। धीरे।
0: तबे पो। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
1: रेंगेंगे। जी सर।
0: कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
0: यस सर।
1: यस सर।
0: अब हथगोला फेंको। गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: कार्यक्रम मिट्टी दी महक, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का

स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 10:10 और पूरी 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
3: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने

0: यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पूना गया, पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी जी जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
0: वाह, हाँ।
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे

0: के घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बंबई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बंबई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना।

0: तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ? तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप। ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ
1: और
0: नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था, और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया, जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गए,
0: भूल भी गया, क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं

0: भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया था।
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत

0: हाँ,
1: प्रदर्शन।
0: वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे,
1: जी
0: जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं,
1: जी
0: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे,
1: जी
0: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है, जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में
1: जी
0: बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया,
1: जी
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे,
1: जी
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई,
1: जी
0: अच्छा हुआ।
1: जी
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना,
0: हाँ,
1: ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूं, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती हैं, लेकिन हमें तालियां मिलती हैं।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल देना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूं।
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी,
1: जी
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का युनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: महारानी का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए,
1: जी
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ, बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप ये कर पाएंगे, मैंने कहा जरूर करूंगा, कैसे करेंगे, मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए, और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी, मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं।
1: जी
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे, उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले,
1: जी
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे, तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है, वो छोड़ देते थे, और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि आप,
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया,
0: जी
1: वो ही आपका इसमें
0: जी जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या

0: स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है। मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग मैं उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे।

0: और इस तरह हम दोनों ने मिलकर इक्की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: इक्की मायाई हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।

0: रंग तरंग
1: कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिस

0: ने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल, इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया। ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है, और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

आहा सुचित्रा, इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेय घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम आप समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: राम लखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से, मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मन्नर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मन्नर उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मन्नर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: अनुरदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन, मनोहर दास और आनंद की आवाज है। इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं। और अब सुनते हैं मनोहर दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिल गवित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए

0: अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Arlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Program 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Program scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry.

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में

0: ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशंस कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं ना, कोई व्यक्तिगत नहीं है और उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने SIR कमेटी रखा लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु त्रिकी जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
0: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ESIC अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई।
2: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
3: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, BCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी

0: इसदन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एएसपी निखिल राय के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
1: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया, तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारी एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे

लिखे हैं, जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदन लाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बंद कर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गए।

और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं, फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं, और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं, और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें, तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1 लाख फॉलोवर हैं, 1 लाख हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपटकर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी 2 दिन पहले भी आया था, नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने के सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे कौर साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित पद ग्रहण सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजनगर सीट से भी जीत हासिल की है। अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी व्यवस्थाएं।
2: एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार

0: कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निर्देशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें। साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बढ़ाकर आधे से भी कम कर दिया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86 जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को केवल जमानत मिली है, उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। दुमका में दवा व्यवसायियों के विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट

0: एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जाएगा। दुमका केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने बताया कि 15 मई से जिले के दवा व्यवसायी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1: पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर क्षेत्र में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक फारूक के नेतृत्व में एक छापा दल का गठन किया गया और उनके द्वारा वहां पर छापेमारी की गई। दो अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलहरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल?
1: बस सोनाली, बिल्कुल हाल चाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे, और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर, और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी
0: बहुत
1: जाएगा।
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है
1: क्योंकि दो आरजे के साथ

0: दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना, कि मतलब गाने सुनाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था मन।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है
0: अच्छा,
1: कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई
0: तो
1: है।
0: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, है ना।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
0: विषय
1: दें।
0: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला
1: ये
0: दूंगी।
1: जो ऐसे आइटम होते हैं ना, भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना
0: हाँ,
1: के
0: ये बात तो
1: लेकर नहीं
0: सही
1: आ
0: है,
1: सकते
0: सही
1: ना
0: बात है,
1: इसको, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में, हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
0: और
1: है।
0: इस शर्त पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे भेजेंगे, और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं।
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं, सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता
1: भाई मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना,
0: ना।
1: कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने
0: तो
1: सुंदर
0: भी आप
1: सुंदर
0: मेंटेन है ना ये
1: तो
0: बात हो
1: वही तो
0: जाती है,
1: बात
0: तो
1: है
0: इसमें
1: कि
0: हमें संतुलन रखना है ना।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है ना,
0: बिल्कुल
1: ये
0: आनंद है, और
1: संतुलन जरूरी है।
0: संतुलन बहुत जरूरी है, और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी
1: वो
2: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन

0: जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं, और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: और सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम या सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, और 1-2 महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ मैंने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
0: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम

0: सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत स्वस्थ रहते थे,
0: बहुत स्वस्थ रहते
1: और काम
0: थे।
1: कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समझ, घर में चक्की भी चलना
1: हाँ।
0: है तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है,
0: पानी भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ,
1: कितना सारे काम
0: बहुत
1: करते
0: सारे काम
1: थे।
0: थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ,
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की
1: हाँ।
0: सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम तेरा क्रेजी इस गाने है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल
1: भाई मैं
0: बजने
1: देख
0: लगती
1: रही
0: है। तो
1: थी।
0: देखो मैं एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना
1: लेते हैं एक
0: अंतराल।
1: ब्रेक।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से।
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत
0: और
1: सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही पर सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो।

0: बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पर चढ़ के एक खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी, ऐसा लग रहा था।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
1: खाया जाता है,
0: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
0: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
1: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
0: हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
1: एक हमारे लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता है, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन इसमें मजा आता है जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: तो
1: वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति

0: में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
0: एक
1: आपने।
0: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
1: क्या
0: एक दिन।
1: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है।
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है कि लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। हाँ,
1: हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, यानी आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले ही
1: साथ
0: डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये
1: एक्स्ट्रा
0: सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो पैकेट
1: से
0: वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे
0: जाता
1: रखे।
0: है।
1: देखो हमारे साथी लिख कर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
0: सचमुच
1: हमारे
0: इंदौर
1: देश
0: बार
1: में।
0: बार जाने को जी
1: जी
0: करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और
1: है
0: खूब
1: ना।
0: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
1: बिल्कुल
0: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ
1: फिलहाल
0: रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और
1: है
0: आप
1: ना।
0: सभी को सोनाली पाठक।
1: और मंत्री

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान
1: मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20 रहा। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। गुमला नगर भवन में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहिया, साथी और बीटीटी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मिर्गी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रशिक चंद्र हासा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ। जी
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर उन्हें फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो
1: दर्जा होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: कवि के रूप
1: बात
0: में,
1: है
0: एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा,
1: बल्कि हेड करेंगे।
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ।

0: नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, को एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो, वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: ये गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: था, खुद गाते थे।
1: तो वो घर वाले भी

0: और वो तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: कहने
1: रहा
0: की
1: है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं। तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहां जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो मेरा जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको
1: हाँ
0: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल।
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा। तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह,
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, कि वो जयपुर से जा
1: जा
0: चुके थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर
0: हाँ,
1: में जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है।
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल
0: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो मिसार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: हाँ
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी,
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका।

0: कर्पूर चंद कुलिश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ। यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे। सुरजीत पातर लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से।
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे।
1: हाँ,
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: नहीं
0: मतलब
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ विषय साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे,
1: क्या बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुनाऊं?
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम

0: शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
1: जी
0: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ,
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी,
0: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
0: हाँ
1: लगा है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो
1: में।
0: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते नहीं
1: दौर
0: थे।
1: भी ऐसा था कि पिताओं से
0: हाँ
1: संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी, दे
0: नहीं
1: देकर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप
0: कोई
1: रे,
0: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आमने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से
1: ये तो नया खुलासा है हमारे
0: एक
1: लिए।
0: था मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाते तो
1: लेना।
0: वहां तंग करना या मस्ती करना,
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आती थी कि
1: थी।
0: आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
1: जी,
0: खैर तो वो छोटू की शिकायत
1: रोज आ रही
0: जो
1: है।
0: है मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
1: प्रोटेक्शन,
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ,
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो मैं भूल नहीं सकता।
1: उसका जिक्र ना ही करें तो
0: तो ये एक
1: अच्छा।
0: अच्छा बचपन बीता,
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो, हम
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो
1: उनकी।
0: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
1: हाँ,
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल,
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जस...

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हाँ? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ मैं उठता बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें
0: तो
1: सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो आम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब

0: सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती

0: हो चुकी थी
1: जी,
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी,
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: तो खुद
1: और
0: मैंने
1: मुश्किल भी है,
0: हाँ,
1: बहुत
0: हाँ,
1: मुश्किल भी
0: हाँ,
1: है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए, सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: मैं जो
1: जी,
0: मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।

0: जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाह। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूं।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना। ये
1: जी
0: आता है, फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: काहली।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुशनसीब हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: यू,
1: मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनसीबी। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज
0: यू।
1: जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है रेडियो की।

0: तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
1: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
0: जी जी,
1: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
0: जी जी बिल्कुल,
1: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। बहुत हाँ। अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
0: अच्छा खान पान था,
1: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
0: जी,
1: सब कुछ अच्छा था, बहुत
0: जी,
1: अच्छा था
0: जी,
1: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
0: वाह वाह,
1: तो मैं वहां फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा।
0: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
1: बिल्कुल
0: होती
1: सही
0: है
1: बात।
0: और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
1: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: वहीं मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ
0: जी
1: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
0: जी
1: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
0: बिल्कुल
1: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर, मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
0: जी जी जी
1: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
0: जी
1: वो जयपुर में था।
0: जी जी जी
1: नाटक लिखना, कंपोज करना,
0: बिल्कुल
1: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
0: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बढ़े थे,
1: पला
0: तो आप
1: बड़ा
0: सब
1: था।
0: जानते थे
1: और फिर
0: और
1: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले।
0: जी
1: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
0: कॉन्सर्ट
1: प्रोग्राम
0: होते
1: कर,
0: थे
1: कॉन्सर्ट होते थे,
0: जी,
1: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
0: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
1: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
0: जी जी
1: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
0: वाह,
1: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
0: क्या बात है,
1: उसका किया।
0: वाह,
1: और इसके अलावा गीत गोविंद,
0: अरे गजब,
1: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी यूनुस, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
0: बिल्कुल
1: जयदेव जी का
0: जी
1: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों
0: संस्कृत में,
1: संस्कृत में,
0: अरे बाप,
1: तो गाने संस्कृत में है
0: जी,
1: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
0: हाँ,
1: है ये,
0: तो बहुत मुश्किल काम है,
1: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ। और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में
0: जी जी
1: वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, वो सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि
1: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
0: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
1: अभिज्ञान शाकुंतल
0: जी,
1: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया,
0: वो
1: किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
0: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य समूह
1: नहीं, विकल्प

0: ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच जो हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही।
1: जी, क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी
0: हाँ
1: तरह से अपने
0: हाँ
1: अपने अपने आप
0: हाँ
1: को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया।
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी,
0: जो गोगोल का
1: इंस्पेक्टर
0: उन्होंने,
1: जनरल का।
0: हाँ नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया,
1: वाह,
0: डायरेक्शन भी किया, और वो भी किया
1: तो
0: जनरल।
1: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार,
0: हाँ इसमें करनी वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
1: जरूरत।
0: होता था,
1: जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि
1: बिल्कुल,
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये मैं
0: ये
1: करता
0: हाँ
1: हूं।
0: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो। जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
1: बिल्कुल
0: है
1: होती
0: ना,
1: है। जी
0: जानते हो। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है,
1: जी
0: उस
1: जी
0: वक्त 4 मौजूद थे, और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
1: कि नहीं, आप करो।
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: 4 कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद
1: तो आप
0: हैं और
1: उनको।
0: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने छूट दी, और उसकी वजह से वो मैं एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहां मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
1: जी
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
1: हाँ
0: लेके उसको कोई पढ़ता था, और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम तो वो मैं करता था। तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे ये
1: ये
0: हुआ।
1: चीजें चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: जांच ही केंद्र है।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेट्टा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया, जहां मंत्री और विधानसभा कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास गोमिया ले जाया गया। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लहराकर होटल संचालक से विवाद कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, दो बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घिराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरो औरो, और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी दैनिक दिनचर्या को दुरुस्त रखें, और साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे मोबाइल से दूरी आवश्यक। वार्ता में सुनेंगे कृति सिंह को। वार्ता का विषय होगा स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 6:02 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम सुनेंगे खेती बारी। खेती बारी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़े किसान। साथ ही चर्चा में सुनेंगे खेतों की गहरी जुताई के लाभ। भेंटवार्ता में सुनेंगे प्राकृतिक खेती के लाभ पर। इस पर विशेष जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे चर्चा में पशुपालन में महिलाओं की भूमिका। आज की बात में सुनेंगे अदौरी बरी बनाने का उचित समय, और भेंटवार्ता में सुनेंगे मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंटवार्ताकार होंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे का समय होगा। प्रादेशिक समाचार का 7:10 पर झीले में आजकल सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर विधानसभा समीक्षा सुनाई जाएगी रांची केंद्र से। 7:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग प्रस्तुत किए जाएंगे और 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के तहत आज सुनेंगे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता में सुनेंगे गर्भावस्था के मुख का कैंसर। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अमूल्या स्वाति रांची से और भेंटकर्ता होंगे श्री संजीव कुमार लाल। 8:00 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से का।

मिनट पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम में आप शामिल होंगे और 10 बजे हम पुनः वापस आएंगे अपने स्टूडियो कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर। 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का, और हमेशा की तरह रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, आज यदि देखा जाए तो हर हमारी बहनों के पास एक ही शिकायत होती है कि उनके बच्चे मोबाइल के आदि हो चुके हैं और जब देखो तब हाथ में मोबाइल पकड़े होते हैं। तो सचमुच में ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारी बहनों के लिए और इस पर इसका निराकरण करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मोबाइल जो है वो हर माता पिता को परेशान कर रहे हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे छुड़ाएं। तो बहनों, इस पर आपको थोड़ी तो धैर्य रखनी होगी और यदि हम देखें कि आज जो है मोबाइल वो बच्चों की ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है और ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन में खोए रहते हैं, इसीलिए उनके जो फिजिकल ग्रोथ है या मानसिक जो वृद्धि होनी चाहिए उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ये हर माता पिता के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो विषय है होता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें या इसकी लत कैसे छुड़ाएं। तो जो सबसे बड़ी बात है ये कि हम अक्सर देखते हैं कि अधिकांश महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देती है ताकि उनके बच्चे जो है आसानी से खाना खा सके और वे फ़ोन में उलझे रहें। तो ऐसा ना करें, बहनों को ऐसी जो आदत है वो नहीं डालनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि यही जो आदत है वो आगे चल के भी उनकी आदत बनी रहती है और बाद में छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमारी बहनों को यदि बच्चे को खाना खिलाना हो तो उसे अन्य तरीके से बहलाएं, गाना सुनाएं या कहानियां सुनाएं या फिर पक्षियों को पशु पक्षी का जो कहानी है वो सुनाएं, ये सब उनका मन इस तरह से भी उनका मन को इधर उधर भटकाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मोबाइल ही थमा दे यही उचित नहीं है। दूसरी बात की

रूटीन है तय हो जाएगी और उन्हें भी ये विश्वास हो जाएगा कि हमें इतने ही देर के लिए मोबाइल चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप अपने बच्चों की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसे यदि आप मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजें, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करें। अब जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ अभी शुरू होने वाली है और बहुत से स्कूल में हो भी गई हैं, तो इस गर्मी की छुट्टी में तो बच्चे अक्सर घर में रहेंगे ही और भी मोबाइल से चिपके रहेंगे, लेकिन यदि उससे उन्हें दूरी बनानी है तो बच्चे को आप किसी और एक्टिविटी में उसे डालें। आजकल जो है बच्चों के लिए गर्मी में के समय में बहुत सारे स्कूल में अलग से क्लास चलते हैं, कहीं ड्राइंग के लिए, कहीं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कहीं संगीत के लिए, तो कहीं जैसे बच्चे की रुचि हो उसमें आप उसमें भेजें। और ये बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनके शारीरिक वृद्धि के लिए, मानसिक वृद्धि के लिए, कि उन्हें अदर एक्टिविटी में उसे शामिल करें। और ये एक माँ के ऊपर दायित्व होता है कि अपने बच्चों को वो किस प्रकार से उसे हर समय उसे इंगेज रख सकती है, तो ये जो है बच्चों को इंगेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे घर के कामों में भी आप उसे शामिल कर सकते हैं, और उसे या यदि डांस हो, स्विमिंग हो, खेल कूद हो, इन सब में भी उसे आप इंगेज कर सकती हैं। तो ये माँ के ऊपर दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से मोबाइल से दूर रखने की वो कोशिश करती हैं और किस प्रकार से उनके मन को जो है वो एक्टिविटी वाले कामों में ले जा सकती हैं। तो ज़रूर ये बच्चे जो हैं वो उसी तरह से ढल जाएंगे और मोबाइल से जो उनकी जो दूरी है वो निश्चित ही अपने आप होने लगेगी। तो बहनों, इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर अमल करनी चाहिए। तो चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: ईद के बाद बहनों हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, इस पर जानकारी देंगी कृति सिंह।
1: दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ और विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। हमारा देश शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, सामाजिक रोक टोक, पर्दा प्रथा, अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार के कारण महिलाओं को हमेशा दबा कर रखने की प्रवृत्ति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को और भी खराब किया है। समाज में इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, फिर भी स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में भी सिद्धांत एवं व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। भारतीय संविधान पुरुषों व महिलाओं के बीच अधिकारों की मान्यता देता है, परंतु भारतीय समाज में आज भी स्त्रियों की भूमिका एवं क्रिया में भेद किया जाता है। महिलाएं संवैधानिक दृष्टि से तो सुदृढ़ हो गई, किंतु वास्तविक रूप से वे आज भी शोषण व उत्पीड़न का शिकार बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामाजिक रूपरेखा को जानना अति आवश्यक है। आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत करने में बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने 1970 में ही लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई। और आज लघु वित्त आंदोलन विश्व के 7000 संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह गांव की महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करती है, तथा जिसका उपयोग वे सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती हैं। इस प्रकार समूह की महिलाएं हफ्ते अथवा महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर एक दूसरों की समस्याओं का समाधान करती हैं, जिससे ये महिलाएं गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है, तथा इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों के साथ जोड़कर बचत तथा महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में समानता की भावना को विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मनिर्भर बढ़ाना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। स्वयं सहायता समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए महिलाएं अपने सदस्यों में से ही 3 प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करती हैं। पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यतः शिक्षा तथा आत्मविश्वास होता है, ताकि समूह में हिसाब किताब का काम ये स्वयं कर सकें। प्रत्येक महीने समूह की नियमित मीटिंग होती है, जो किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर पर बारी बारी से होती है। समूह की मीटिंग में प्रत्येक सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। मीटिंग के दौरान प्राय महिलाओं द्वारा आपस में भिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे ऋण के लेन देन, बचत, नए सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया, गाँव या जहाँ वे रहती हैं उसके आसपास की समस्या तथा समाधान, पर्यावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बच्चों की शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, ऋण का उपयोग तथा बजट के तरीके आदि। समूह की महिलाएं इस बात के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करती हैं कि वे किस प्रकार छोटी छोटी बचत कर

एक बड़ी राशि समूह से प्राप्त कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह संचालित करने से उनमें विभिन्न क्षमताओं का विकास होता है, जो इस प्रकार है स्वनिर्माण का शक्ति। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन देन, कागजी कार्रवाई करने से उनमें आत्मविश्वास पनपता है। जानकारी तथा संगठन उनकी उपलब्धता, समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत, संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी तंत्र, वित्त संस्थाओं इत्यादि से संपर्क में आती हैं, जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सामूहिक निर्णय के मामले में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है, जिससे ये महिलाएं अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा समूह से उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी आवश्यकताओं तथा बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति में करती हैं। मनोवैज्ञानिक विकास, स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पे सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है। कौशल विकास, हमारे देश में प्राय महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत तथा सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास, इन समूहों में सामान्यतः सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्रवाई में लोकतांत्रिक विधियों को अपनाया जाता है, जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी, आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबों का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा आशाजनक माना जाता है। भारत में 80% से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, जिनका भुगतान दर 95% के आसपास है। आज भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तमाम ऐसे समूह हैं जो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। इनमें फूल वासन यादव ने वर्ष 2001 में महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से की थी। इस समूह को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। घने व पिछड़े गांव में महिलाओं ने मिलकर कई समूह का संगठन किया, जिससे वे घर बैठे मोमबत्ती, बकरी पालन, बल्ब व अपने घर के पुरुषों को ई रिक्शा लोन पे दिलाकर उन्हें नशा से मुक्त तथा रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जो महिला घर में प्रताड़ित की जा रही है, उन्हें समूह के माध्यम से न्याय दिलाने का भी कार्य समूह कर रही है। अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक हैं। अतः स्वयं सहायता समूह आज देश के निर्माण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं को दूर कर सरकार व समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता कृति सिंह से। विषय था स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। और चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और फिल्मी गीत।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे।

0: में पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कृषकों के लिए कार्यक्रम खेती।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आवश्यकता है इस प्रचंड गर्मी से बचने की। जी हाँ श्रोताओं, हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता इस गर्मी में कम हो जाती है और इस भीषण गर्मी में बहुत जल्द बीमार पड़ने की आशंका बनी रहती है और समय पर उपचार न होने पर जान भी जा सकती है। अतः इस भीषण गर्मी से बचने के वे सारी सावधानियां बरतें, जैसे कि दिन के धूप या लहर में ना निकलें, यदि निकलना भी पड़े तो शरीर ढक कर निकले, साथ में पानी का बोतल अवश्य रख लें, ध्यान रहे खाली पेट कदापि ना निकले और थोड़ी थोड़ी देर में पानी, सिकंजी या फलों के जूस या रसीले फलों का सेवन अवश्य करते रहें। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन जरूर लें जो शरीर को स्वस्थ रखता ही है और साथ ही साथ विपरीत मौसम में भी शरीर की रक्षा करता है। और देखिए, इस भीषण गर्मी में जहाँ बचने की आवश्यकता है, वहीं किसानों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वे इसका लाभ लें। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए उन्हें कड़कती धूप की आवश्यकता नहीं है, वे सुबह शाम में भी इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए श्रोताओं, अभी मई का महीना चल रहा है और इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है और चिलचिलाती धूप से लोग तो बेहाल है ही। ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ सीजन की खेती से पहले अपने खेतों की गहरी जुताई कर लें, जिससे न केवल खेतों में लागत में कमी आएगी बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसा करने से उन्हें आगे जो खेती करेंगे उसमें उनका जो है उत्पादन देखने को मिलेगा, इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो किसान भाई खेतों की गहरी जुताई नहीं करते हैं, वे कम से कम हर 3 साल में एक बार उन्हें अपने खेतों की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। खरीफ सीजन की खेती से पहले गर्मियों में गहरी जुताई खेतों के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है और गहरी जुताई हर किसान को 3 साल में अपने खेतों को एक बार अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें लाभ ही लाभ मिलता है। जहाँ तक गहरी जुताई की बात है, तो गहरी जुताई जो है वो अभी रबी सीजन की जो फसल कट चुके हैं उसके बाद करवा सकते हैं हमारे किसान भाई। और अभी जो किसान भाई खेतों की जो लोग नहीं करवाए अभी तक, वे अभी समय है कि इसकी गहरी जुताई करवा लें और 1 फीट गहरी जुताई अवश्य करें और फिर मिट्टी पलटने वाले हल से उसे चला, रोटावेटर या मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को ऊपर नीचे करनी चाहिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि गहरी जुताई कराने से खेत की जो मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और जिससे जब बारिश होगी तो उसका पानी अच्छे ढंग से खेतों में समा सकेगा, यानी अंदर तक पानी जा सकेगा और जिससे कि खेत की मिट्टी वो जिसमें नमी बरकरार रहेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि प्रचंड गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के आसपास हो जाता है तो फिर गहरी जुताई करने से जो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छुपे होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद या तो चिलचिलाती धूप से मर जाते हैं या फिर उसे पक्षी वगैरह चुनकर

0: ले जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं मिट्टी में वो सभी नष्ट हो जाते हैं मिट्टी की गहरी जुताई करने पर। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे किसान भाइयों के लिए अलग से उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से उसमें लागत नहीं आती। और इस तरह से गहरी जुताई कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ दीमक का प्रकोप हो वहाँ भी ये बहुत ही फायदेमंद है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है श्रोताओं कि सूरज की तेज तपिश के बाद जो खेत की मिट्टी है वो एकदम से नई हो जाती है, यानी उसमें जितने कीड़े मकोड़े हैं या जितने विषाणु हैं जीवाणु हैं वो सभी उसमें खत्म हो जाते हैं और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, हवा का आवागमन बढ़ जाता है। तो इससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि खेत की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नई हो जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि अभी जो आने वाला सीजन है खरीफ सीजन में धान की, जिसमें हमारे किसान भाई बुआई करेंगे, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। उसमें उनकी मेहनत कम लगेगी, लागत कम लगेगी, और अलग से उन्हें दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, अलग से उन्हें खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उन्हें इसका फ़ायदा अगले जो भी फसल है उसके लिए मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है श्रोताओं ये कि इससे फसल को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, यानी कि उन्हें पोषक तत्व मिल जाते हैं। और इसका जो है अंतर देखा जाता है जब अगली फसल उसमें लगाई जाती है। इतना ही नहीं, अभी गहरी जुताई करके हमारे कुछ किसान भाई इसमें गर्मा मूंग भी लगा देते हैं या फिर उसमें हरी खाद भी लगा सकते हैं। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है और अगले फसलों के लिए बहुत ही अच्छा उसे जो है पोषक तत्व मिल जाता है मिट्टी के लिए भी और अगले फसल के लिए भी। तो गहरी जुताई करना सचमुच में बहुत ही फायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। और अभी समय है उनके पास, ये उचित समय है कि वे अपने खेतों की गहरी जुताई कर ले और उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े खरपतवार हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता प्राकृतिक खेती। इस पर विशेष जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के जाने माने कृषि वैज्ञानिक जो उद्यान विभाग से हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: धन्यवाद किसान बंधु।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इससे हमारे किसान भाई कैसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
2: प्राकृतिक खेती जैसा शब्द है, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब ही है जो कि नेचर में अपने आप हो रहा है, इसको प्राकृतिक कहते हैं।
1: जी,
2: प्राकृतिक खेती का एक मुख्य फायदा ये है कि किसान इसमें जो है 100% शुद्ध उत्पाद का सेवन करते हैं और लोगों को सेवन कराते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा होता है और स्वास्थ्य अच्छा होने से उनकी हर एक मानसिक स्थिति अच्छी होगी और अच्छा कार्य करेंगे और उनका विकास जो है सही होगा। यही प्राकृतिक खेती, जो एक मतलब नेचुरल खेती इसको इंग्लिश में कहें तो, जो प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हो रहा प्राकृतिक खेती है।
1: इसमें किन किन पदार्थों से प्राकृतिक खेती के लिए खाद वगैरह तैयार किया जाता है, कैसे मतलब इसका इसको हमारे किसान भाई उपयोग में ला सकते हैं?
2: देखिए, जैसा कि सरकार का अभी मुख्य बात चल रहा है कि प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा रुझान है, लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी संस्कृति उसके साथ साथ फसलों का उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हम खेती करने जा रहे हैं तो परंपरागत खेती जो पहले बहुत पूर्व वर्षों में हुआ करता था, चाहे आज भी पठार के क्षेत्रों में चाहे पहाड़ों पर जो आपको फसल दिखने को मिलता है, चाहे वो उद्यानिक हो चाहे वो आपका नेचर के समय के अनुसार जो बीज जो है अपने आप निकल कर उत्पादन कर रहे हैं, वो सब प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती में अभी जो थोड़ा सा हम लोग बदलाव हम लाया गया है, उसमें बदलाव ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करना है। इसमें बाजार निर्मित

0: चीज़ों का उपयोग नहीं करना है जिसमें कि रासायनिक पदार्थ ज़्यादा हो। और हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हम वैसे फसल का चयन करें जो हमारा देसी हो, इसमें ज़्यादा हम लोग हाइब्रिड नहीं लेते हैं। और खेती करने के लिए मुख्य रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन का जो जुताई है बहुत लिमिटेड हो। कोशिश करना चाहिए कि डिबलिंग प्रोसेस है, मतलब छेद करके बीज को गिरा दें और उसको ढक दें। उसके साथ साथ ये जो हमारा खेती है प्राकृतिक खेती, इसको सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के भी नाम से जाना जाता है। इसके मुख्यतः जो है पांच स्तंभ है। ये पांच स्तंभ जो हमारे हैं उसमें जैसे बीजामृत, जिससे कि हम लोग बीज का उपचार करते हैं, जीवामृत है, इसका भी हम लोग खेती में उपयोग करते हैं, धन जीवामृत है, उसके बाद निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है। ये सब जो है, ये जो शब्द है, शब्द जितने भी जो बने हैं गाय के उत्पाद से बने हैं और प्राकृतिक के रूप में जो अनाज और फसल मिल रहे हैं उससे बने। जैसे कि अभी मैंने कहा बीजामृत में हम लोग जो बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस ये है कि देसी गाय का, वो भी नहीं कि हमारा जो है विदेशी नस्ल का ये हो, देसी नस्ल का जो गाय है उसका यूरिन जो होना चाहिए 20 लीटर ले लें, और उसके बाद हमारा उसका गाय का जो गोबर है ताजी गोबर उसको 5 किलो ले लिया जाता है
1: जी।
0: उसके बाद जो है हमारा ये काउ डंग जो है उसके साथ लाइम हम लोग मिलाते हैं, लाइम कहने का मतलब बुझा चूना, इसका 50 ग्राम, और जंगल कमेटी चाहे मेर कमेटी 50 ग्राम, इसको मिला के एक बर्तन में रखते हैं, पात्र में इसकी तैयारी करने के पश्चात इसका उपयोग जो है 2 से 3 दिन करने के बाद इसको हम लोग बीज को उपचारित करने में करते हैं, जिसको कहते हैं
1: बीजामृत।
0: जीवामृत में क्या है कि इसमें भी हम लोग गाय का उत्पाद में जैसे गोबर, यूरिन, उसके साथ साथ बेसन,
1: अच्छा
0: आटा,
1: अच्छा
0: बेसन का जो है ये सब का जो है, चाहे दलहनी फसल का आटा,
1: अच्छा बेसन की बात आ रही है या आटे की बात आ रही है, तो
0: आटा नहीं बेसन का आटा,
1: हाँ तो हाँ। तो उसको हमारे किसान भाई लोग उसका प्रयोग करेंगे जो मतलब घर में उपयोग नहीं ला सकते
0: जी? नहीं, ऐसा है कि ये ज्यादा क्वांटिटी का उपयोग नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमको जब प्राकृतिक खेती करनी है, हमको खेत में नेचुरल चीज देना है, प्राकृतिक चीज देना है, तो उसमें कोशिश करना है जैसे कि गुड़ हुआ, बेसन हुआ, तो 1 kg,
1: अच्छा
0: 1-1 kg, तो ये सब जो है मात्रा हम दे सकते हैं।
1: कितनी मात्रा में दे सकते हैं?
0: जैसे कि जीवामृत हुआ,
1: हाँ।
0: तो जीवामृत के लिए हम लोग जो लेते हैं तो 20 लीटर पानी लेते हैं, है ना, 20 लीटर पानी में आपको 10 केजी जो है गोबर लिए, ताजा गोबर, गुड़ लिए 1 kg, और बेसन फ्लोर जो है लिए 1 kg, मतलब कि बेसन का पाउडर
1: जी,
0: और उसको मिला के उसके बाद एक अच्छे पात्र में रख कर उसको मिलाते हैं अच्छी तरह से, और पूरी तरह से तैयार होने के पश्चात जो है हम फसल में उपयोग करते हैं।
1: उसका कितने मतलब हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं? इतना
0: छिड़काव करने के लिए जैसे कि देखिए होता क्या है कि अभी जो हम लोग खेती करते हैं इसमें रसायन का उपयोग करते हैं
1: जी।
0: और एकदम इस रसायन वंचित खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो फसल लेने जा रहे हैं उसमें वैसे किस्मों का चुनाव और वैसे फसलों का चयन करें जो कि एक दूसरे का पूरक हो।
1: अच्छा।
0: और पूरक खेती का, खेती से जो हमारा आय आ रहा है तो वो आय जो है हमारा, वो जो आपका मेन फसल जो लगाए हैं उसका आय को वो बराबर कर देता है। तो आपका जो मेन फसल जो लगा रहता है उससे जो आय हुआ वो आपका एकदम शुद्ध लाभ हुआ। तो ये हमारा प्राकृतिक खेती का ये है।
1: अच्छा, बातें कर रहे थे हम लोग जीवामृत की, उसके बाद
0: जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, उसके बाद बीजामृत हुआ, निमास्त्र हुआ, उसके बाद ये हुआ आपका अग्नियास्त्र हुआ।
1: अच्छा, अग्नियास्त्र की क्या भूमिका है?
0: अग्नियास्त्र देखिए जैसे कीड़ा मकौड़ा के लिए,
1: अच्छा,
0: हम लोग कीड़ा मकौड़ा के लिए केमिकल यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीम का पत्ता उपयोग करते हैं। नीम का पत्ता को लिए और उसको क्या किए कि हरा पत्ता को और इसको पानी में फुला कर और उसको उसका उपयोग जो है हम लोग गाय का पेशाब में उसको फुला दिए, और फुलाने के बाद उसका कंसंट्रेशन बनाकर उसको पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करते हैं जिससे कीड़ा उड़ा नहीं लगता।
1: अच्छा, तो इस प्रकार मतलब इतने प्रोसेस से हमारे किसान भाई गुजरते हैं प्राकृतिक खेती में, तब खेती सफल हो
0: देखिए ये जैसा अभी बदलते परिवेश में अभी देखा जाए तो गाँव हो चाहे शहर हो, हर एक क्षेत्रों में जो है बीमारी का अभी पूरा मतलब कि क्रोनिक बीमारी,
1: हाँ,
0: जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, उससे लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। इसका मेन वजह है कि हम लोग केमिकल
1: का प्रयोग ज्यादा
0: कर रहे हैं, चाहे वो कीटनाशी के रूप में हो चाहे खाद के रूप में हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर सीधा रूप से मिल रहा है। तो इससे बचाव के लिए आज के समय में जरूरी हो गया है कि प्राकृतिक खेती का विकास किया जाए और ज्यादा से ज्यादा, अरे इसमें एक फसल इसका जो उत्पाद होगा और एक जनरल जो आप खेती करते आ रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसके उत्पाद से इसका गुणवत्ता ज्यादा होता है, इसका चमक ज्यादा होता है और इसका मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होता है। जो आप उत्पाद एक एकड़ के लिए

0: ले रहे हैं, अगर हाफ एकड़ में आपका चाहे उससे कम ही एरिया में अगर आप सही ढंग से प्राकृतिक खेती किए हुए हैं तो उतना आपका भरपाई कर देता है।
1: अच्छा, ये प्रश्न उठता है कि हम प्राकृतिक खेती किन किन फसलों पर कर सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, तो क्या ये सब भी प्राकृतिक खेती के तहत आएंगे?
0: प्राकृतिक खेती में किसी चीज पर भी उपयोग किया जा सकता है। अच्छा। इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान देखिए, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपना खेत में जो है जीवाणुओं की संख्या बढ़ा दें।
1: अच्छा,
0: जितना जीवाणु हमारे खेत में मिलेगा उतना अच्छा हमारा फसल होगा। ये जीवाणु जो है कि हमारा भूमि का संरचना को सुधारता है, जल धारण की क्षमता को सुधारता है, और इसे होता क्या है कि भूमि का संरचना सुधारने से एरेशन हवा का जो है प्रभाव जड़ को अच्छा मिलता है और पौधा का विकास अच्छा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलता है।
1: जी, तो हमारे किसान भाई अगर इसे अपनाते हैं तो कहाँ तक खुशहाल व्यतीत हो पाएंगे?
0: ये थोड़ा सा सुनने में तो अटपटांग लगता है, प्राकृतिक खेती, लेकिन इसमें उत्पादन शुरू में अगर आप जाएंगे तो 1 से 2 साल 3 साल आपको थोड़ा कम मिलेगा। कारण कि जीवाणु का संख्या को बढ़ने में 2-3 साल टाइम लग जाता है
1: जी।
0: और इसका भरपाई करने के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। अब जैसे कि माना जाए कि यह कीड़ा लगता है तो हम लोग केमिकल का उपयोग कर दे रहे हैं अभी धरेल से, और उसके बाद तुरंत तोड़ के खा भी लेते हैं जिसका कि इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है। अब इस केस में जैसे कि अगर फफूंद ही लगा हुआ है, कीड़ा ही लगा हुआ है, तो निमास्त नीम का पत्ता को लिए, 5 kg हरा पत्ता को लिए, चाहे नीम का लिए, करंज का लीजिए, चाहे आप बेल का लीजिए, सिनवार का लीजिए, किसी चीज का पत्ता को, एक पत्ता को लिए और उसको काव यूरिन में डालकर उसको अच्छा से एक सड़ा दिए, और सड़ाने के बाद छान कर उसके पानी में मिलाकर छिड़काव कीजिए, तो उससे आपका कीड़ा नियंत्रित हो जा रहा है। तो इसका एक प्रभाव ये होता है कि अगर इस फसल को अगर तुरंत आप बाजार में भी ले जाते हैं चाहे अपने भी उपयोग करें तो शरीर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है।
1: अच्छा।
0: मानिए फफूंद आ गया है तो 5 लीटर एकदम मट्ठा सड़ा हुआ 4 से 5 दिन पुराना मट्ठा को अगर लेकर इसको 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करेंगे तो फफूंद खत्म हो जाता है। तो ये सब जो है हमारा केमिकली जो है हम लोग इसे बच सकते हैं।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई खासकर अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाए?
0: हाँ, अभी तो अभी बृहद पैमाने पर इसका प्रचलन चल रहा है, और किस ये जो है इसका आप अगर खेती करने जा रहे हैं तो पहले मिट्टी का नमूना
1: अच्छा
0: आपको कराना जरूरी है। अगर मिट्टी जाँच करा लेते हैं उसके उपरांत ही आप अपना कार्य को प्रारंभ करते हैं तो इससे आपको मालूम चलता है कि हमारे खेत में रासायनिक खाद का प्रभाव कितना है, हमारे खेत में जीवाणु जो है कितने उपलब्ध हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि किस चीज़ की आवश्यकता है उसको हमको पता चलेगा, और उस चीज़ का हम सही ढंग से उपयोग करेंगे तो कम लागत में ज़्यादा हम कमा सकते हैं।
1: तो इसके लिए सरकार भी किसान भाइयों के साथ आज के समय
0: में हमारे सरकार भी जो है इसमें बृहद पैमाने पर कर रही है, और सरकार की योजनाओं में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया है, और कुछ अभी चुने क्षेत्र विशेष में ही सरकार इस पर फोकस कर रही है कि एरिया वाइज इसका डेवलपमेंट किया जाए। एक बृहद पैमाने पर इसका करना संभव अचानक नहीं है, और किसान को भी प्रेरित कर रही है कि आप लोग इस जो प्राकृतिक रूप से जीवामृत तथा अन्य अमृतों का जो उपयोग कर रहे हैं वो बृहद पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं तो आपका शारीरिक तौर पर जो विकास आपका जो है अच्छा
1: मतलब
0: होगा।
1: देश को आप
0: कुपोषण मुक्त और
1: रोग मुक्त रखेंगे
0: और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान विषय पर जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार
0: किसान बंधुओं, धन्यवाद।
2: प्राकृतिक खेती इस पर विशेष जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और किसान भाइयों, अभी देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं उनके जो खेत है वो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, और जब उनके गेहूं की कटाई हो जाती है, रबी यानी रबी फसल की कटाई हो जाती है, तो कुछ समय के लिए उनके खेत खाली पड़े रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। गेहूं कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ने के बजाय उसमें हरी खाद की फसलें लगाना एक लाभकारी विकल्प हो सकता है। इससे न केवल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है बल्कि खरीफ फसलों की उपज में भी सुधार होता है, वृद्धि होती है। तो हरी खाद हम बता दें श्रोताओं की वह तकनीक है जिसमें खेत में विशेष प्रकार की फसलें बोई जाती है जो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है, और ये जो फसलें हैं वो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती हैं। और जब ये फसल खड़ी फसल तैयार हो जाती है, यानी जब उनमें फूल आने वाले होते हैं, तभी उन्हें खेतों में मिला दिए जाते हैं और उसमें

से मिट्टी में मिलाकर उसे पलट दिए जाते हैं, जिससे कि ये सड़ गल कर प्राकृतिक रूप से वो मिट्टी में मिल जाती है और प्राकृतिक खाद का रूप ले लेती है। तो इसे ही हम कहते हैं हरी खाद। और हरी खाद में हम बता दें कि कौन कौन से हमारे किसान भाई फसलों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ढैचा, उड़द, मूंग, लोबिया इत्यादि इत्यादि, जो हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख फसल ढैचा को मानी जाती है, जो मात्र 45 दिनों में तैयार हो जाती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती हैं। ढैचा के लिए प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और उड़द, मूंग और लोबिया यदि लगानी हो तो 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होते हैं। तो सबसे पहले खेत में पानी भरें ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे, फिर खेत को जोतकर भुरभुरा कर लें और फिर बीज की बुआई करें और 15 से 20 दिन बाद इसे सिंचाई करें और जब फसल तैयार हो जाए तो इसे जोतकर मिट्टी में मिला दें और फिर से दोबारा पानी इसमें भरें। और यदि आप उड़द, मूंग या लोबिया जैसे फसलों को हरी खाद के तौर पर लगाते हैं तो उनके फलियों को तोड़कर बाकी को खेत में मिला दें और यह पौधे कुछ दिन में सड़कर खाद का रूप ले लेती हैं। तो ये जो है ये जो तरीका है वो मिट्टी में पीएच मान जो स्तर होता है उसमें सुधार करती है, फिर से नाइट्रोजन की जो बचत है उसमें सहयोग होता है। हमारे किसान भाइयों को अलग से नाइट्रोजन रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना ही पर्याप्त होता है और अगली फसल के लिए एक बेहतर जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, पोषक तत्व उन्हें मिल पाते हैं और इससे अगली फसल में पैदावार अच्छी मिलती है, उत्पादन अच्छे मिलते हैं और वो भी गुणवत्तापूर्ण। तो हरी खाद लगाएं या फिर आप गर्मा मूंग भी लगा सकते हैं, गर्मा उड़द भी लगा सकते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा समय है किसान भाइयों कि आप अपने खेतों को खाली ना छोड़ें और यूं ही उसे बेकार ना जाने दें। यदि आप इसमें ये प्रयोग करते हैं, हरी खाद लगाते हैं या गर्मा मूंग लगाते हैं या गर्मा उड़द लगाते हैं या गर्मा सब्जियां भी लगा सकते हैं आप लत्तर वाली, लेकिन उसमें कुछ भी लगाएं ताकि आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, मिट्टी में नमी बनी रहे, इससे आप ही को लाभ होगा। और अगले जो अभी खरीफ सीजन में अभी आप धान लगाएंगे, उसके साथ आप अरहर लगाएंगे या तिल लगाएंगे, जो भी लगाएंगे उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो हमारे किसान भाई अभी समय है कि आप अपने खेतों में ये लगा सकते हैं हरी खाद वगैरह। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक चर्चा से, और चर्चा है पशुपालन में महिलाओं की भूमिका। तो हम बता दें बहनों कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ जो भी खेती बाड़ी है या पशुपालन है सभी का ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण आधार है, और बल्कि ये केवल आय का साधन ही नहीं बल्कि परिवार के आर्थिक सुरक्षा और मजबूत

0: स्तंभ भी माना जाता है। और यदि पशुपालन की बात करें तो इसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में जो ग्रामीण पशुपालन की रीढ़ होती है वो महिलाएं ही होती हैं। महिलाएं सुबह से लेकर रात तक पशुओं की देखभाल करती हैं। पशुओं को चारा देना, पानी पिलाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, बछड़ों की देखभाल करना और पशुओं को समय पर दवा देना इत्यादि इत्यादि, ये सभी जो कार्य हैं वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और पूरे मेहनत से। लेकिन जो महिलाएं हैं वो अगर देखा जाए तो महिलाओं के बिना शायद ये संभव होगा भी नहीं, चाहे पशुपालन हो चाहे वो काम कृषि क्षेत्र में हो, सभी जगह उनका जो योगदान है वो विशेष होता है। और यदि महिलाएं का मेहनत देखा जाए तो निश्चित रूप से वो इनका योगदान सराहनीय है। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ पशुओं की देखभाल ही नहीं करती बल्कि दूध निकालने से लेकर दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, दही, घी, मक्खन, पनीर, सभी में उनकी भूमिका जो है काफ़ी सराहनीय होती है। और उनके उत्पादन से लेकर विक्री तक यानी परिवार की आय बढ़ाने में उनकी भूमिका बखूबी होती है। और इतना ही नहीं, यदि महिलाएं इसमें अपना सहयोग देती हैं तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनती हैं, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन सभी आय अपने आय को बढ़ाने में भी अपने सहयोग देती हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित होती हैं। और आज देखा जाए तो ऐसे कई स्वयं सहायता समूह हैं जिससे जुड़कर हमारी बहनें जो हैं वो पशुपालन क्षेत्र में या डेयरी क्षेत्र में हो, सभी में अपना सहयोग दे रही हैं और एक अलग पहचान बना रही हैं। और सिर्फ पहचान ही नहीं बना रही है बल्कि वो राष्ट्र के जो विकास में भी अपना सहयोग दे रही हैं। और यदि देखा जाए तो राष्ट्र का विकास महिलाओं के बिना संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महिलाओं का योगदान जो है वो चाहे परिवार के क्षेत्र में हो या समाज या राष्ट्र में, सभी में उनका योगदान जो काफ़ी सराहनीय है। और उसके बिना चाहे परिवार का विकास कर सकें या राष्ट्र का, उनका विकास संभव नहीं है। तो चलिए बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। लेकिन इस भेंट वार्ता को सुनने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परम

0: परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हां किसान बंधु, हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
5: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
4: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
5: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
4: बिल्कुल,
5: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की भिन्नताएँ पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि अब जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तरह

0: किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें, स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ।
0: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप में नहीं करें,
0: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा,
0: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
1: अच्छा।
0: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
1: अच्छा।
0: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में आप
0: फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उरद मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना सकते, जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंद जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
1: अच्छा।
0: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
1: ये सब रोकेंगे।
0: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं ऐसे करके भी। इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
1: अच्छा।
0: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
1: रुक जाएगा, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
1: डोभा का निर्माण करवा दीजिए।
0: हाँ, डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में।
1: हाँ।
0: तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहां पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: और डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
1: इतना काफी है।
0: इतना काफी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
1: और इसके अंदर जाएगा।
0: हाँ, आज जो आपको जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल सकते हैं,
1: निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल।
0: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन।
1: हाँ,
0: तीन तरह की जमीन यहाँ पे है।
1: हाँ,
0: तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाएं तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
1: अच्छा।
0: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
1: साधन कितना,
0: कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
1: अच्छा।
0: यदि पानी का आने का साधन वहाँ पे है तो जो है वहाँ तालाब का निर्माण करे।
1: अच्छा।
0: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता।
1: हाँ, सूख जाता है।
0: हाँ, तो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे। जैसे कि मैंने

0: 4 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा
1: जी।
0: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो, और उसकी जब खुदाई कराएं जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराएं तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो 3 तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखें
1: अच्छा
0: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह
1: ओहो
0: देखा जाता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है,
1: हाँ
0: जिसके
1: और
0: चलते
1: रुकावट
0: जो
1: आ
0: है
1: जाता है।
0: वो जो है पानी आ नहीं पाता है
1: नहीं
0: तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो 3 तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको, वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है वो
1: जी
0: मिट्टी को डाले।
1: अच्छा
0: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे,
1: अच्छा
0: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है,
1: अच्छा
0: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहाँ पर तालाब मिट्टी पानी जो मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज़्यादा आती आ जाती है।
1: हाँ हाँ
0: उसके पीछे कारण है कि जहाँ से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है, और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब में
1: अच्छा
0: आ गई।
1: बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं।
0: हाँ, बांध में वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको
1: कटाव को रोकेगा।
0: कटाव को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2,
1: अच्छा
0: जैसे कि 1 फीट गहरा करे
1: हाँ
0: तो 1 फीट जो है
1: चौड़ा
0: चौड़ा
1: करें
0: करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे,
1: सीढ़ी नुमा।
0: सीढ़ी नुमा तालाब बनाना चाहिए, डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ
0: उससे क्या
1: हाँ
0: होता है कि स्लोप जब ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा मिट्टी कटाव उतना
1: कटाव
0: कम
1: उतने ज्यादा।
0: होगा,
1: हाँ बिल्कुल।
0: और सीधा बिल्कुल हम काटेंगे तो वो हमारी मिट्टी जो है कोलैप्स होने का, तालाब जो है वो
1: खतरा
0: हाँ
1: नहीं।
0: भंसने का
1: हाँ
0: खतरा रहता है, तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
1: बिल्कुल
0: इसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
1: तो ये तो
0: तो
1: कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो क्षीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी। आखिर
0: देखिए
1: क्या करें किसान भाई?
0: देखिए आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे।
1: जी
0: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें, और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें
1: तो ज्यादा
0: या
1: बेहतर।
0: जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम तरह आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है 1 एकड़ के लिए।
1: जी
0: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे
1: तो
0: हैं
1: सब मर जा
0: उससे
1: रहे
0: नष्ट
1: हैं।
0: हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है,
1: हाँ बिल्कुल
0: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं
1: हाँ वो नहीं
0: जो
1: है।
0: दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व तो देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता
1: विकास
0: है।
1: होता है
0: तो वो
1: बिल्कुल।
0: जो है बैक्टीरिया मर गए हैं, और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें।
1: जी और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने की बात आती है कि कुछ आप रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप प्राकृतिक जो कीटनाशक केचुआ वगैरह उसका भी उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो है जैसे कि हम लोग एकाएक बंद

0: करने की बात नहीं कहते हैं कि रासायनिक खाद को आप एकाएक बंद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि 1.5 kg यूरिया प्रति कट्ठा आप दे रहे हैं तो उसको जो है आप जो है 1 kg कर दीजिए या 1.25 kg कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और कम कर दीजिए, फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है, अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा मैंने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का मैंने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के मैंने खाद की जरूरत नहीं है। 10 kg से 1 acre की आप खाद का काम हो सकता है 10 kg गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: लेकिन तकनीकियां अपना
0: किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे तो ज्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है, तो कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती है, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बना करके दिखाते हैं किसानों को और किसान के खेतों में भी हम लोग इसको करते हैं।
1: अब बात उठता है कि हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, तो कई तकनीकियां खेतों खलिहानों में ऐसे उतारी गई हैं जिनमें आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाता है?
0: ये बहुत कारगर है, ये जो है टपक सिंचाई जो है झारखंड सरकार इस पे जो है 90% सब्सिडी दे रही है और आज से नहीं कम से कम जो है 12-13 साल से जो है इस पे सब्सिडी आ रहा है और किसान इसको जो है अपने खेत में जो है इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो आप कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ आत्मा एक विभाग है, कृषि विभाग का ही पार्ट है, एक है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको बूंद बूंद सिंचाई का टपक सिंचाई का जो है आपको मिल जाएगा। एक फार्म होता है उसको भरना होता है, उसके साथ आधार कार्ड और जो है अपना जमीन का पेपर जो है जिस जमीन में आपको जो है लगाना है। इससे बहुत तरह के फायदे हैं, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पानी की बचत है
1: जी,
0: 60-70% पानी की बचत आपकी हो जाती है। किसान ऐसे तमाम हम लोगों को मिलते हैं कि वो जो है पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा, इससे कौन कौन सी खेती की जा सकती है, जैसे अनाज वाली फसलें हो गई? हाँ,
0: इससे जो है धान को छोड़ करके सारी फसल की जा सकती है, गेहूं भी।
1: वाह।
0: इससे जो है सिर्फ धान ही एक ऐसी फसल है जिसमें ये कारगर नहीं है, क्योंकि धान में हमेशा पानी लगा हुआ जरूरत होता है और कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें जो है पानी हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, इसलिए जो है ये हर फसल के लिए उपयोगी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है किसी तरह का श्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप सतही सिंचाई करते हैं तो आप पंप से कर रहे हो या बोरिंग से कर रहे हो, तालाब से जैसे भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 लेबर जो है आपके खेत में लगे रहते हैं। यदि 1 acre सिंचाई करना है तो आपको 4 घंटे लगेंगे।
2: श्रीताम, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण, इस पर विशेष जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पे। तो आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ बहनों, अब हमें दे इजाज़त, कार्यक्रम किसान वाणी से नमस्कार।
3: थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। मीडियम 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोकभवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान जताया है। वहीं मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 7,50,00,000 टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था बेहतर करने में किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि श्री सिंह का योगदान राजनीति के क्षेत्र में हमेशा यादगार रहेगा।
1: वो बहुत ही अच्छे इंसान, सेम दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग वो एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहे और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी है। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इस वक्त उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूँ।
0: हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि गोमिया में पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर शोक की लहर है। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
2: सुविधाओं को लेकर गुमला में धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि राज्य में पानी, बिजली, विधि व्यवस्था सारी चीजें चौपट है। आम नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है। इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुँचाना चाहिए।
0: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप

0: हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आज कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित रहे। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी समेत कई मामलों में वांछित था और पिछले एक दशक से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के लिए सक्रिय था।
1: हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और पुलिस के द्वारा राजेश यादव पकड़ा गया। इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहां जहां इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड बरामद हुआ और इसके पास से हम लोग को रिकवरी हुई है एक उसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब एक दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: साहिबगंज जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी प्रखंडों में ग्राम संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान ग्रामीण परिवारों और सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीमा नवीनीकरण, क्लेम प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ कल रांची में झारखंड T20 लीग 2026 के आधिकारिक ट्रॉफी लॉन्च समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड क्रिकेट के भविष्य और राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समारोह में भारतीय क्रिकेटर और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन विशेष रूप से शामिल होंगे। पेंटाथलॉन। सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रसिक चंद्र हसा और मिलन सोय जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आज
2: कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल आयुष्मान भारत गुमला जिला के गरीब मरीजों के लिए न सिर्फ जीवनदायिनी साबित हो रहा है बल्कि इस योजना के कारण गरीब व लाचार मरीजों के जमीन व जायदाद भी सुरक्षित हैं। इस योजना को लेकर गुमला सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजनों ने बताया कि
2: मेरा नाम दिलमोहन सिंह है। आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा इलाज हो रहा है और दवा चल रहा है, नहीं तो हमको जमीन बेचना पड़ता या कोई चीज को माल मौसी को बेचना पड़ता, इसलिए मेरा फ्री में सब दवाइयाँ और ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद।
3: मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मेरा लड़का का सुखदेव सिंह नाम है और गुमला अस्पताल में अच्छा से इलाज हो रहा है और मोदी जी का आयुष्मान दिया हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे खेत बेचना पड़ता, हर बैल बेचना पड़ता, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा नाम नारायण साहू है, मेरा भैया का इलाज करा रहे हैं भारत आयुष्मान कार्ड से, बढ़िया इलाज हो रहा है, हम लोग का खर्चा कम पड़ रहा है, हम लोग गरीब इंसान है तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए भारत आयुष्मान कार्ड से करा रहे हैं।
5: मेरा नाम सुभिता है, मेरा बच्चा है, वजन के चलते आयुष्मान के द्वारा मेरा चल रहा है, और आयुष्मान नहीं रहते तो मेरा बच्चा को बहुत दिक्कत होता, मेरा बच्चा आयुष्मान के चलते ही अच्छा है। और कार्ड नहीं रहता तो समस्या था ये कि हम लोग का अस्पताल में ही भर्ती नहीं होता, और कार्ड के चलते ही हो रहा है अच्छा से देखभाल, बाहर नहीं जा सकते।
1: गुमला जिला में आयुष्मान भारत के तहत लाभ ले रहे मरीजों एवं जिले के लक्ष्य को लेकर डॉक्टर मोनिका ने बताया कि
6: ये तो ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें टर्शरी जो ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट, उसका हम लोग लाभुकों को बेनिफिट देते हैं। यहाँ जनरली पीएमजे के उस 5 लाख तक का कवरेज मिलता है और ये कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। हमारे जिला का टारगेट जो था उसके हिसाब से अभी हम लोग 69% कवरेज कर चुके हैं, दैट इज हम लोगों ने 69% लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। हमारे स्टेट में राशन कार्ड धारी होते हैं उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बना के देते हैं, अंडर पीएमजे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका ना केवल एडमिशन के समय जो होता है और उसके बाद एडमिशन के दौरान टेस्टिंग या फिर दवाई जो लेते हैं वो उनको फ्री में मिलता है। गुमला जिला में तो जैसे एवरेज हम लोग महीने में सदर में ही केवल 500 जैसा लाभुक रहते हैं और बाकी सीएचसी वगैरह में भी ऑन एन एवरेज 100 जैसा लाभुक हर सीएचसी में पर महीने आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट सिस्टम में तो जो उनको दवाई वगैरह बाकी सब इलाज उनको फ्री ही रहता है। इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट है जो रांची जाके इसका लाभ उठाते हैं। ये प्रोग्राम भी इसलिए बना था जो लाभुकों को ऐसा ना लगे कि उनके पैसे के अभाव में वो अच्छी इलाज या अच्छा दवाई नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते हैं तो इसका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से वो फ्री का इलाज और फ्री की दवाइयां ले सकते हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना गुमला

0: जिला के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
1: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं जिगर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अभिजीत और साधना सरगम ने। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है आनंद।

अगला गाना हमने लिया है सड़क फिल्म से, आवाजें अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की है, गीत के बोल समीर के हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में समीर के बोलते संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। अब आइए सुनते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म से आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। मदन पाल के बोल थे, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब इसी के साथ कार्यक्रम एक रंग, फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आइए श्रोताओं आज सुनते हैं गर्भावस्था के मुख का कैंसर। इस विषय पर ली गई डॉक्टर अमूल्या स्वाति जो कि रांची की हैं उनसे भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के समय में कैंसर के नाम से ही लोगों में घबराहट शुरू हो जाती है। एक ऐसा ही कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम गर्भाशय या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कहते हैं। ये हमारी माताओं और बहनों को क्यों हो जाता है, क्या कारण है और इसका लक्षण क्या है, ताकि समय रहते हैं हम अपना बचाव कर सकें और एक स्वस्थ जीवन हम जी सकें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमूल्य स्वाति। डॉक्टर स्वाति स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, आजकल सर्वाइकल कैंसर लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्या कारण है और ये सर्वाइकल कैंसर क्या है?
2: नमस्कार, आपके इस मंच से मैं लोगों में जागरूकता लाना चाहती हूँ सर्वाइकल कैंसर के रेस्पेक्ट में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं फोकस करूँगी ताकि हमारे जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको सचेत किया जा सके, अवेयर किया जा सके। आज की डेट में कॉमनेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में फीमेल्स को, लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है, जिससे बचा जा सकता है। अगर हमारा लेटेस्ट डेटा, अभी जो सबसे नियरेस्ट जो आंकड़े हैं वो अगर हम देखें, तो हम लोग के यहाँ इंडिया में 7 से 8 मिनट में लगभग एक औरत की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के वजह से हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्विक्स, सर्विक्स बच्चेदानी के मुँह को कहा जाता है। तो जो सर्विक्स है वो हर औरत के शरीर में है, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसी के थ्रू जो भी इन्फेक्शन है वो शरीर में निचले हिस्से से जाता है। तो इसीलिए इस सर्वाइकल कैंसर को हम लोग कैसे पहचानने, जानना बहुत ज़रूरी है। और ये दिखता कैसा है, तो कोई भी डॉक्टर अगर इसको देखे तो जब एडवांस स्टेज हो, जब आगे बढ़ चुका हो कैंसर, तो देखने में बहुत आसानी से पहचान किया जा सकता है कि वो गांठ या जख्म की तरह नज़र आता है सर्विक्स के मुंह पर। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर में जाएं तो ये CIN के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोमा इनसीटू। ये सर्वाइकल कैंसर जो इनिशियल स्टेज में है वो कैंसर नहीं होता है, वो ऐसे स्टेज में होता है जिसको अगर हम पकड़ लें तो आगे कैंसर हो ही ना पेशेंट को। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो पकड़ में आ गया है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। तो अगर हम वायरस का स्क्रीनिंग सही समय पे औरतों में करते रहें तो हम लोग पकड़ सकते हैं काफ़ी पहले ही सब क्लिनिकल स्टेज में, जब पेशेंट सिम्टोमेटिक भी ना हो, जब उनका कुछ ऐसा सिम्टम भी ना हो कि हाँ वो कैंसर में प्रोग्रेस कर गई हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए 3 बिंदुओं पे मैं आज बात करना चाहूँगी। पहले तो वैक्सीनेशन, दूसरा अवेयरनेस और तीसरा स्क्रीनिंग। वैक्सीनेशन क्या है, अगर हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बात करें तो आज हम लोग का प्राइमरी टारगेट ग्रुप कोई भी बच्ची जो 9 से 14 साल के बीच में है, उसको हम लोग जैसे कोई भी टीकाकरण पहले करते थे हम लोग या आज भी कर रहे हैं, तो पहले पॉक्स की बीमारी होती थी, अब नहीं होती। तो ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पॉक्स की बीमारी है वो टीकाकरण के वजह से धीरे धीरे कम होती चली गई। तो अब हमारा भविष्य का टारगेट है कि हम लोगों को कैंसर के रिस्क को बहुत घटाना है, इसके लिए हम लोग को वैक्सीनेट करना है, टीकाकरण करना है अपने बच्चों बच्चियों का जो कि 14 साल से कम है। और इस समय प्राकृतिक रूप से हर बच्चे में इम्यूनिटी पावर, कोई भी इन्फेक्शन की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही होती है। तो जब हम लोग वैक्सीन देते हैं तो मात्र 2 डोज, एक जो स्टैट डोज दिए और एक जो 6 महीने के बाद दिए, तो इससे 100% प्रोटेक्शन देखा जा रहा है।

0: है कि बच्चियों में आ रहा है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, कि अक्वायर करने के अगेंस्ट जो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करता है, अगर करे भी तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करता है, कैंसर नहीं कॉज करता है। अगर हमारी बच्ची 14 साल से ऊपर हो गई तो 0.26 या 0.16, इसका मतलब हुआ पहला जो स्पॉट डोज दिए हम लोग, फिर 2 महीने के बाद और फिर 6 महीने के बाद, इस वैक्सीन को लगाकर 15 से 26 साल की लड़कियों को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी 95% प्रोटेक्शन रेट रहता है बच्चियों का। लेकिन इस वैक्सीन को हम लोग अप टू 45 ईयर्स 45 साल की उम्र तक की फीमेल्स को दे सकते हैं। जितने जल्दी हम लोग वैक्सीन लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा बच्चियों को। तो ये तो एक वैक्सीनेशन ड्राइव है जो हम लोगों को लाना है अपने माध्यम से। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट द डिज़ीज़ एंड स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या करेंगे, हर फीमेल को 30 साल के ऊपर हर 5 साल पर अपने आप को जाँच कराते रहना है HPV के अगेंस्ट। ये बहुत आसान सुविधाजनक तरीके से हम लोग OPD प्रोसीजर के रूप में, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगी तो आप बिना दर्द के आराम से लिटाकर उसको एक छोटे से स्टिक से हम लोग जो सर्विक्स है बच्चेदानी का मुंह जो है वहाँ का पानी लेकर हम लोग इसका जांच कर सकते हैं कि आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। वायरस में भी हर वायरस जो HPV वायरस है वो कैंसर नहीं कॉज करता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन 16 और स्ट्रेन 18, जो आज हमारे पास टेस्ट उपलब्ध है जांच करने के लिए कि आपको वो है कि नहीं। वो भी है तो भी वो खुद से साफ हो जाता है हर औरत के शरीर से, जिसका रह गया परसिस्टेंस ऑफ वायरस, वैसी पेशेंट्स को हम लोग को हर 5 साल पे बुला के, हर साल अगर पॉजिटिव है तो देखना होगा, अगर वो नेगेटिव है तो हर 5 साल पे अप टू 60 ईयर्स 60 साल की उम्र तक स्क्रीन करते रहना है। तो इससे क्या है कि हम लोग कैंसर होने ही ना दें। अगर किसी को शुरुआती पकड़ रहा है तो हम लोग शुरुआती दौर में ही इलाज कर लें, जैसे थर्मल एब्लेशन, ठंडी सेंक या गर्म सेंक, इस तरह से हम लोग शुरुआती दौर में ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहेंगे सबको कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपको लग रहा है कि जब इनिशियल स्टेज है तब तो कोई लक्षण नहीं होते, अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन है तो जैसे कोई स्वाइन फ्लू हुआ किसी को या किसी को कोविड ही हुआ, तो वैसे पीरियड में लोगों को समझ नहीं आता है कि हाँ मेरे को इन्फेक्शन हुआ, वायरस आया वायरस गया। वैसे ही HPV भी है कि अगर वो पॉजिटिव है तो आया गया ऐसे हो सकता है, आपको पता भी ना चले। लेकिन अगर किसी को धाद है प्रोलॉन्ग्ड समय तक, अगर लंबे समय तक किसी को गंदा महक वाला बदबू वाला पानी जा रहा है, तो ऐसे लोगों को एकदम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। किसी को अगर मासिक के बीच में भी अगर खून जाए तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। किसी को पति के साथ संपर्क बनाने के बाद खून जाए, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। किसी को लगातार अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो जो कि किसी और इलाज से ठीक ना हो पा रहा हो, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। तो ये सब तो है कि जब आपको सिम्टम आ गया, जब लक्षण आ गए तो आप गए डॉक्टर के पास और आप स्क्रीन हुए और पता लगा। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो ये कि बच्चियों को हम लोग को वैक्सीनेट करना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कि हम लोग को पहले ही स्क्रीन कर लेना है। ये तो सिम्टम आ गया, पहले ही स्क्रीनिंग कर लेनी है।
1: तो ये टीकाकरण बताया, ये 100% सटीक है ये?
0: हाँ सटीक है 100%, अगर सही समय पे उसको लगाया जाए, जैसे शुरुआती दौर में लगाया जाए तो, नहीं तो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे पेशेंट्स का एक्सपोजर टू HPV बढ़ता है तो उससे फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो घटते चला जाता है। तो द अर्लियर द बेटर, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है,
1: ये बचाव है,
0: बचाव है जी। ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कैंसर का शुरुआती स्टेज पकड़ लिया तो उसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है। अगर शुरुआत हो रही है तो इस माध्यम से हम लोग इसको चल सकते हैं आगे, वैक्सीनेट कर सकते हैं बच्चियों को, बाद में ट्रीट कर सकते हैं। और एक और बात कि हर छाला जो कि बच्चेदानी के मुंह पे है उसके वजह से हिस्टेक्टमी नहीं करानी, बच्चेदानी निकलवाना नहीं है डर के, क्योंकि उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो जब तक कि प्रूवन कैंसर ना हो। आजकल बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, हर औरत को हक है कि वो अपने बच्चेदानी को रखे अपने साथ, ना कि गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दे, जैसा कि पेरिफेरी में एक्सप्लेन करते हैं या डॉक्टर्स को भी अज्ञानतावश अगर पता ना हो कि हाँ भाई धाद है छिला हुआ है तो बच्चेदानी निकाल दो, तो ये सब नहीं करना है। पहले स्क्रीन करो, क्योंकि अब माध्यम आ गया, जब नॉलेज नहीं था अलग बात है, अब अगर नॉलेज है तो पहले स्क्रीन करो, पता करो है क्या, उसके बाद उस मुताबिक ट्रीट करो।
1: यदि आप जागरूक हैं और सजग रहते हैं और इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और अपना इलाज शुरू करवा दें। माताएं बहनें अपना बचाव करें, किन किन खास बातों के ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है?
0: आज की युवा पीढ़ी बहुत ही फ्रैंक हो गई है, आगे बढ़ती जा रही है, तो मेरा तो अनुरोध रहेगा कि हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये

0: सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से ही एक है जो कि वायरस के माध्यम से हो रहा है, लेकिन कॉन्डम भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है क्योंकि ये जो वायरस है ये मस्सा वगैरह भी कॉज करता है. इसका जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है जो कि कैंसर नहीं कॉज करता है 6 and 11, तो ये एनोजेनाइटल एरिया निचले हिस्से में जो मस्सा होता है वो सब भी कॉज करता है. तो इसीलिए जैसे जांघों का संपर्क, हाथों से, शरीर से, किसी भी माध्यम से ये ट्रांसफ़र हो सकता है. तो जागरूकता की आवश्यकता अपने प्रैक्टिसेस में, अपने डेली लाइफस्टाइल में लेने की ज़रूरत है. और अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें. तो जैसे किसी भी वायरस का रूल है कि शरीर में आए तो आप अगर हेल्दी हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो कोई भी वायरस आएगा और चला जाएगा. वैसे ये भी वायरस है कि अगर आपको हो भी तो वो आराम से चला जाएगा. और हर औरत को अपने जीवन काल में टोटल अगर पीरियड देखें तो कभी ना कभी ये वायरस आता ही है, पर चला जाता है, पर सबको कैंसर तो होता नहीं है. तो आप अगर हेल्दी हैं तो हर वायरस से फाइट कर सकते हैं.
1: और अपना बचाव बिल्कुल ज़रूरी है, और अपना बचाव कीजिए, हेल्दी डाइट लेते रहिए और तनाव से दूरियां बनाइए और खान पान का ध्यान रखिए. और जैसे भी आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो आप सजग होने की आवश्यकता है. और ख़ासकर जैसा आपने बताया, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं वो अपनी वैक्सीनेशन जरूर करवा लें ताकि इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमूल्य स्वाति, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में. और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा. नमस्कार.
2: आकाशवाणी गर्भावस्था के मुख का कैंसर, इस विषय पर अभी आपने सुना डॉक्टर अमूल्या स्वाति जो कि रांची की थी, उनसे ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता. और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजय कुमार लाल. और इसी के साथ अब स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी समाप्त होता है. आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा।
4: अनजान ऐप से बचें,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, इस अंतराल के बाद आइए अब हम चलते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम का आगाज़ हम करते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से आवाज़ें कुमार सानू और लता मंगेशकर की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत दिया है जतिन ललित ने।